0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूषाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गते कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।

0: हम दे जाकर और नहीं होता सात से एक से पांच अपलोड चार मेरा हाउस को रेडियो आदि खोले रखें क्या हो?
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज।

को आधार में हमी यह भाका छोड़कर छो वहां को रोजाई भन्दै वहां समझना चाहने संपूर्ण समर्पित करते भाका जोड़।

0: फोनबाट समेत नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
1: सम्पर्क स्थान निशान फार्मेसी तल्लो वालिङ हस्पिटल सोक, प्रोप्राइटर गीता तिवारी, फोन नम्बर 0363441163, मोबाइल 98461980।
0: स्मरण रहोस्, डाक्टर आउने दिन यही भाद्र 13 गते शनिबार।

0: शाखा कार्यालय कान्तिपुर स्माइल डेन्टल केयर वालिङमा सेवा लिनुहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ।
1: सम्पर्क कान्तिपुर स्माइल डेन्टल केयर वालिङ बजार मल्ल फार्मेसी अगाडि।
0: मोबाइल 9547216049।

एस आदि खोला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार चाँचा।